जनहित का लागि नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय को सहयोग रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकार्यमा कुष्मा नगरपालिका पर्वत

0: California.
1: Extreme energy drink.
2: समीचो चौदाकिया में बोधे लोटी पढ़ी रो बैंगे ने विवरण पी विषय मुई खाता लिखे हमरो
3: खाई खाई बहु कोई लोटी बढ़ दिलवा
4: आंगी समीचो लोटी पढ़ती हूँ छांता ही गुदी
3: बढ़ दी आ बढ़ दी वाल लोटी खाली पढ़ दिम बा सहीली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक बाइबर खाने बनी खाई विषय खाई मई विश्वास आनंद फोने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था कोई पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
4: सिद्धार्थ ब्याङ र क्यारे जन हेजरी जारी सन्देश
5: सिद्धार्थ ब्याङ सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
6: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज

0: கட்டின் லை கட்டி பைசனும்
1: म राजा हुन्छु तिमी पनि त्यो रानी हुनेछ एक हाम्रो छुट्टै कहानी बनाउला प्रिन्सेस हामी घरी घरी विषय दिने कस्तो तिम्रो पानी अब नचाउन पर पर जानी जानी म नजिक आउँदा किन हुन्छ पानी पानी पैसा थाल्छ अब सोच्ने पो हो कि मन मिलेर साथी मलाई रोज्ने पो हो कि

जनहित का लागि नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय को सहयोग रेडियो दिदी बहिनी 95 2 मेघहर्ज को सहकार्यमा कुष्मा नगरपालिका पर्वत